0: जी हाँ दोस्तों, रोजाना हम ढूंढते हैं एक नई धुन और रोजाना हम निकल पड़ते हैं एक नए सफर पर। आज फिर एक बार आपकी दोस्त आपकी होस्ट पूजा हाजिर है लेकर आप सभी के लिए नॉनस्टॉप गपशप,
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर
0: और एफएम रेनबो पर। फिलहाल आपको बता दूं कि 10:03:17 हो चुका है वक्त। जानकारियां ढेर सारी हैं हमारे पास, लेकिन आज हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा छोटा, लगभग 5 मिनट छोटा हो जाएगा, क्योंकि ठीक 11 बजे हम सुनेंगे प्रधानमंत्री जी के मन की बात। फिलहाल शुरू करते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों के साथ।

हमारे कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में हम मौसम की भी बातें करते हैं। तो बता दूं आपको कि स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुजरे कल की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री कम रहा, यानी कि 33.3 डिग्री से थोड़ा कम रहा, और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री से कम, यानी कि -2.6 डिग्री रहा। उच्च आर्द्रता 98% और निम्न आर्द्रता 68% रही। ये तो बात हुई मौसम की, और अगर हम बात करें बाजार के मौसम की, तो केंद्र सरकार ने शनिवार को एक अहम फैसला लिया। उसने देश के टेक्सटाइल और परिधान उद्योग को राहत देने के लिए कपास के आयात पर लगने वाली सभी कस्टम ड्यूटी को अस्थायी रूप से, ध्यान रहे, अस्थायी रूप से हटाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार 1 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक कपास के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस नहीं लगेगा।

अगस्त से स्टॉक मार्केट के समय में हो जाएगा परिवर्तन, यानी कि अब बाजार दोपहर 3:30 बजे के बजाय 3:40 पर बंद होगा। यानी कि अब जो आपके बाजार वाले दोस्त हैं वो 10 मिनट तक और रहेंगे आपसे दूर।

तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो, और दिल में स्वच्छता की भावना कितनी है इसे भी देख ही लिया जाए। स्वच्छ भारत अभियान को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने स्वच्छ ऐप की औपचारिक शुरुआत कर दी है। 10 नगर निकायों में लागू किया गया है इस ऐप को। इनमें आसनसोल, दुर्गापुर, बशीरहाट, पुजाली, तूफानगंज, कांथी, बैदिक, बाटी, कृष्णानगर, नलहाटी और मध्यम ग्राम नगर पालिकाएं शामिल हैं। राज्य सरकार ने बताया कि आने वाले समय में इसे राज्य के सभी 120 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में विस्तारित किया जाएगा। ऐप के माध्यम से नगर क्षेत्रों में जमा कचरे की त्वरित पहचान और उसका निस्तारण किया जाएगा, और साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और दलाल तंत्र पर रोक लगाने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है राज्य सरकार ने। आधिकारिक घोषणा शनिवार को स्वास्थ्य भवन के राज्य के अस्पतालों को 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग के अंडर में रखा जाएगा की घोषणा की गई। इसके लिए केंद्रीय कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है, जहां से अस्पतालों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी।

0: जी हाँ, आज का जो दिन है यानी कि जो 31 मई का दिन है, आज ही के दिन वर्ष 1921 में महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे, जिसे पिंगली वैकैया ने डिजाइन किया था, को संशोधित और स्वीकृत किया गया था। समुद्री इतिहास की सबसे चर्चित समुद्री त्रासदियों में से एक टाइटैनिक त्रासदी, जो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था, जहाज आरएमएस टाइटैनिक, आज ही के दिन यानी कि 31 मई को वर्ष 1911 में पहली बार आयरलैंड में लॉन्च किया गया था। मालवा साम्राज्य की महान और प्रतापी रानी, जिनके जन कल्याण और मंदिर निर्माण कार्यों के लिए आज भी सराहना की जाती है, अहिल्याबाई होलकर, आपका जन्म आज ही के दिन हुआ था वर्ष 1725 में। और बात करें अगर बॉलीवुड की, तो राज खोसला का जन्म हुआ था वर्ष 1925 में। बॉलीवुड के बहुमुखी निर्देशकों में से एक वो कौन थी, मेरा साया, सीआईडी जैसी बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन किया है राज खोसला ने। स्टैंड अप कॉमेडियन और बॉलीवुड अभिनेता वीर दास का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था वर्ष 1979 में। हमने इन्हें देखा था फिल्म दिल्ली बेली और गो गोवा गॉन में। कार्यक्रम में आगे बढ़ें तो आज का दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना। इस दिवस की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 1987 में की गई थी। आज यह दिन पूरे विश्व में जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में मनाया जाता है।
1: आज के दिन

0: चुटकी नुस्खे। एक चुटकी नुस्खे में आज मैं बात करूंगी आज के दिवस के अनुकूल। नो टोबैको, तंबाकू को कह दे ना, तो कुछ थोड़े से नुस्खे आपके साथ साझा करूंगी। तंबाकू की लत यानी निकोटीन को छोड़ने के लिए सबसे असरदार और मजबूत जो तरीका है वो है इच्छा शक्ति। जब भी तलब लगे तो मुंह में सौंफ, लौंग, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा कुछ भी रख लें। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया है कि बस अब मैं कह दूंगा नो टोबैको, तो इससे बेहतर कोई उपाय नहीं, कोई नुस्खा नहीं। खूब ज्यादा पानी पिए ताकि आपके शरीर में जो संचित निकोटीन है वो तेजी से बाहर निकले। जब भी आपको गुटखे की या तंबाकू की तलब हो, सिगरेट की तलब हो, तो आप लौंग मुंह में रख सकते हैं। अजवाइन और सौंफ, उसमें आप काला नमक मिला लें, नींबू की कुछ बूंदें मिला लें और उसे धूप में सुखा लें। ये भी एक अच्छा नुस्खा है नशे की लत को छुड़ाने का। और तंबाकू के नशे को छुड़ाने के लिए आप एक और नशे से जुड़ सकते हैं, वो है चाय का नशा। जी हाँ, जब तेज तलब लगे तंबाकू की, तो उस समय आप थोड़े से चाय की अगर चुस्कियां लें तो भी आपको राहत मिलेगी। रात को सोने से पहले हल्के गर्म पानी के साथ त्रिफला का चूर्ण भी ले सकते हैं। ये आपके पेट को साफ रखेगा और शरीर के हानिकारक टॉक्सिन को बाहर निकालेगा। और एक जो सबसे कारगर तरीका है वो है थोड़ा सा प्राणायाम। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी क्रिया जैसे प्राणायाम हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हैं। नुस्खे हैं, इलाज नहीं, फिर भी नुस्खों को आजमाया जा सकता है अपने स्वास्थ्य और अपने अपनों के स्वास्थ्य के लिए।
1: एक चुटकी नुस्खे।

आकाशवाणी कोलकाता के एफएम रेनबो चैनल पर चल रहा है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। जुड़ना चाहते हैं अगर आप भी इस गपशप से, जुड़ना चाहते हैं अगर आप भी दिल से दिल तक, तो जुड़ सकते हैं हमसे। और आज हम बातें करेंगे उस विषय पर जिस विषय पर आमतौर पर हम चर्चा थोड़ा कम करना पसंद करते हैं। हर घर में ये खबर तो लगती है कि बच्चे को तंबाकू की लत लग चुकी है, लेकिन तब तक वो बच्चा बच्चा नहीं रह जाता, बड़ा हो चुका होता है, युवा में परिवर्तित हो चुका होता है। यानी कि जब वो लत लग रही होती है तब घर वालों को खबर ही नहीं होती। क्या कभी आपने ऐसा किया है, कोई व्यक्ति जो लती नहीं है तंबाकू का, उससे बैठकर बात की हो, उसे बताया हो नशा बुरी चीज है? बिल्कुल नहीं, हम ये काम नहीं करते हैं, लेकिन इस विषय में बच्चों से बात करना जरूरी है, उन्हें जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि जागरूकता ही, जानकारी ही बचाव का पहला साधन है, माध्यम है। तो जुड़ जाइए आप भी दिल से दिल तक और कह दीजिए अपने दिल की बात नो टोबैको डे पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

केशु रिधान खुराना भी हमें संदेश भेजते हैं। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिवेंद्र भूषण संस्कृति पौरुष व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से हमें ये संदेश भेजते हैं। मलियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन भी हमें संदेश भेजते हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का भी संदेश हम तक पहुंचा है। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे का शाहजी नगर देवलूर जिला नांदेड़ से संदेश हम तक पहुंचा है और इनकी पसंद का ये गीत।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन, कोई बोले राम राम। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किट बैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
5: चले
6: ले आ गया नया किट बैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं

0: देशभर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेष कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेष जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेष कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते

0: भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ दो दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है।

केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी
इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर

मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: आकाशवाणी FM रेनबो पर तीन का तड़का, 3:05 और आपके साथ हूं मैं संचिता। इस कार्यक्रम को लेकर बात कर रहे हैं रंगीन पर्दे की दुनिया से लेकर चमकते ख्वाबों की गली तक। ये जो खबरों का मसालेदार जायका लाएंगे हम, बस थोड़ी देर में बात करेंगे, आपके लिए खास होगा एक तड़का। गॉसिप, ग्लैमर और सिनेमा का मजा हर पल में मिलेगा एक तड़का, 3:00 तीन का तड़का। तो तैयार हो जाएं दोस्तों हमारे साथ, यानी संचिता के साथ, बॉलीवुड की हर हलचल जानने के लिए, क्योंकि सुपरस्टार्स जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही आवाज करते हैं और उन्हें हम, उनके कहानियों को हम लाते हैं जिस कार्यक्रम के जरिए, वो है तीन का तड़का।

सुपरस्टार नाउ आई वंडर व्हाट यू आर। 3:09 आकाशवाणी एफएम रेनबो पर कार्यक्रम है 3 का तड़का। डॉन 3 को लेकर नया विवाद, इंडस्ट्री में मचा हंगामा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का संचिता के साथ। बॉलीवुड गलियारों से एक बड़ी खबर, फिल्म डॉन 3 को लेकर नया विवाद सामने आया है। खबरों के मुताबिक कलाकारों के बीच फिल्म छोड़ने या अचानक बाहर होने की घटनाओं ने निर्माता संस्थाओं की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री की संस्था WICE ने एक औपचारिक नियम व्यवस्था बनाने की मांग उठाई ताकि किसी बड़े प्रोजेक्ट को आखिरी समय पर नुकसान न झेलना पड़े। डॉन 3 से जुड़ी चर्चाओं ने इस मुद्दे को और गर्म बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बॉलीवुड में नए नियम बनते हैं या नहीं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी बातें और बहुत सारे जो हैं गॉसिप सामने आ रही है इस डॉन 3 के रिलीज को लेकर। और सुनने में आया है कि सलमान खान भी मीडिएटर बने हुए हैं इस चर्चे को लेकर। फिलहाल हम बनेंगे मीडिएटर गीत को लेकर। अनुषा मानी और विशाल ददलानी की है आवाज, डॉन 2 है फिल्म का नाम। शंकर ईशान लॉय ने इसे संगीत से सींचा और कार्यक्रम है 3 का तड़का।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: जरा दिल को थाम लो क्योंकि आ गया है डॉन। आवारा पागल दीवाना 2 का बड़ा इशारा, लौट रहे हैं येरा अन्ना। दोस्तों, अगर आपको कॉमेडी फिल्में पसंद है तो ये खबर आपका दिन बना सकती है। अभिनेता सुनील शेट्टी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिससे आवारा पागल दीवाना 2 की चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने अपने मशहूर किरदार येरा अन्ना का जिक्र करते हुए लिखा, फिर से आ रेला है, बस फिर क्या था। फैंस खुशी से झूम उठे। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी बाकी है, लेकिन संकेत इतने मजबूत हैं कि दर्शकों की उम्मीदें आसमान छू रही है। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर कार्यक्रम 3 का तड़का, 3:17, आप बने हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। आलिया भट्ट की अल्फा अब पहले आएगी सिनेमाघरों में। बॉलीवुड की चर्चित फिल्म में शामिल है अल्फा को लेकर नया अपडेट सामने आया है। अभिनेत्री आलिया भट्ट और सरवरी अभिनीत इस स्पाई थ्रिलर फिल्म अब अपनी तय तारीख से पहले रिलीज होगी। मेकर्स ने बॉक्स ऑफिस टकराव से बचने के लिए इसी रिलीज को आगे बढ़ा दी है। फिल्म को लेकर पहले से ही जबरदस्त उत्साह है और माना जा रहा है कि ये एक बड़े एक्शन अनुभव के रूप में सामने आएगी। फैंस अब बेसब्री से इसके ट्रेलर और नए गानों का इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम है 3 का तड़का, आगे बढ़ेंगे जिस गीत के साथ। वो है सुनिधि चौहान, अलका याग्निक, शान, उदित नारायण, शंकर महादेवन की है आवाज। फिल्म का नाम आवारा पागल दीवाना। कार्यक्रम 3 का तड़का के साथ हैं आप और मैं संचिता।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: तीन का तड़का के अगले चंक में जाते हुए वरुण धवन की रोमांटिक वापसी हुई है, है जवानी तो इश्क होना है, चर्चे में है। रोमांस और कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी है, अभिनेता वरुण धवन अपनी नई रोमांटिक कॉमेडी है जवानी तो इश्क होना है के साथ वापसी कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों में खास उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि ये एक बार फिर डेविड धवन और वरुण के हिट जोड़ी को साथ ला रही है। सोशल मीडिया पर फिल्म की चर्चा तेज है और दर्शक इसे पुराने दौर की मजेदार फैमिली एंटरटेनमेंट मानकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। और अब एक ऐसी खबर जो पुराने बॉलीवुड प्रेमियों का दिल खुश कर देगी। मुंबई में मशहूर निर्देशक डेविड धवन के नाम खास फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है जिसमें उनकी सुपरहिट कॉमेडी फिल्मों को फिर से बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा है। इस खास कार्यक्रम में कई फिल्मी सितारे भी शामिल हुए। 90s और 20 के दशक के कॉमिक फिल्मों का जादू एक बार फिर लौटा स्क्रीन पर और दर्शक पुराने हंसी मजाक वाले दौर को बड़े पर्दे पर दोबारा जी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ और इस बार अभिजीत और पूर्णिमा की आवाज जुड़वा है। फिल्म का नाम देव कोहली ने लिखा इस गीत को और अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम है तीन का तड़का।

0: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: वन ओ सेवन एफ एम रेनबो पर कार्यक्रम है तीन का तड़का के अंतर्गत परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना के बारे में। भारत सरकार की एक सुरक्षित और गारंटीकृत पेंशन योजना है जिसे मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और आम नागरिकों के लिए शुरू किया गया है। 60 वर्ष की आयु के बाद इसके तहत लाभार्थी को ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक की निश्चित मासिक पेंशन मिलती है। अटल पेंशन योजना यानी कि एपीवाई के कुछ मुख्य आकर्षण, जैसे मैंने कहा कि 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलती है। पति पत्नी को लाभ, ग्राहक सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी को आजीवन उनकी ही पेंशन मिलती रहती है। नॉमिनी को फंड की वापसी, दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी जो है फंड की वापसी ले सकता है। आयु सीमा, इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदक की जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। 1 अक्टूबर 2022 से आयकर देने वाले इस योजना के लिए पात्र नहीं है। आधार कार्ड, एक सक्रिय मोबाइल नंबर और बैंक में बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। अंशदान यानी कि कंट्रीब्यूशन प्रीमियम की राशि आपकी उम्र और के तौर पर चुनी गई पेंशन पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि कोई 18 वर्ष की आयु में 5,000 की पेंशन का विकल्प चुनता है तो उसे हर महीने लगभग 210 का योगदान देना होगा। ये राशि सीधे आपके बैंक खाते से ऑटो डेबिट हो जाती है। योगदान विकल्प भी है, आप अपनी सुविधा के अनुसार मंथली यानी कि मासिक, त्रैमासिक, क्वार्टरली या 6 माही हाफ ईयरली आधार पर निवेश कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस में जाकर ये खाता खुलवा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र जैसे हाउस हेल्प, गार्डनर, डिलीवरी बॉय आदि के लिए आर्थिक सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने और नागरिकों की दुर्घटनाओं, बीमाओं या बीमारियों से बचाने के लिए इस योजना को लाया गया है। 18 से 40 वर्ष के बीच सभी भारतीय नागरिक 60 साल की उम्र के बाद पेंशन पाने के लिए एपीवाई में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। योजना के लाभ के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 20 वर्षों का योगदान करना होगा। स्वावलंबन योजना के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं उन्हें स्वचालित यानी कि ऑटो डेबिट रूप से अटल पेंशन योजना में लाया जाएगा। आपको बता दें कि हर महीने योगदान राशि अकाउंट से काटी जाती है। अटल पेंशन में किए गए योगदान

0: धनराशि आयकर धारा 80CCD के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है। अब सवाल यह आता है कि अटल पेंशन योजना अकाउंट कैसे खोलें? अपनी स्थानीय बैंक शाखा में APY रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और जमा करें। अपना बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर प्रदान करें। अकाउंट खोलने के समय आपकी पहली योगदान राशि आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट से काट लिया जाएगा। आपका बैंक आपके लिए रसीद नंबर, जिसे हम PRAN नंबर जारी करेगा, योगदान अपने बैंक अकाउंट से स्वचालित यानी ऑटो डेबिट रूप से काट लिया जाएगा। अटल पेंशन योजना के लिए अकाउंट खोलने का जो फॉर्म है, आसानी से योजना से जुड़े नज़दीकी बैंक शाखा में आप ऑफलाइन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि APY आवेदन फॉर्म विभिन्न वेबसाइट जैसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे हम PFRDA कहते हैं, उसकी आधिकारिक वेबसाइट से भी मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से अटल पेंशन योजना सदस्यता फॉर्म विभिन्न बैंकिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे भारत के अधिकांश प्रमुख बैंक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी शामिल है। आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अपना मोबाइल नंबर और प्राधिकरण लेटर प्रदान करना होगा, जिससे बैंक हर महीने आपके योगदान को आपके अकाउंट से काट सके, चाहे वो एक महीने का हो, त्रैमासिक हो या फिर 6 महीने का। और ऑटो डेबिट के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट किया जाना चाहिए। मासिक योगदान के लिए नियत जो तारीख योगदान की पहली तारीख से निर्धारित होती है। बाद के सभी योगदान इस तिथि पर आधारित होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप 14 जनवरी को अपना पहला योगदान देते हैं तो आपकी अगली तारीख 14 फरवरी और इसी तरह आगे चलती रहेगी। नॉमिनी व्यक्ति की पहचान के लिए KYC के लिए प्राथमिक दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाता है। पेंशन और कॉर्पस के आधारों, अधिकारों और अधिकारों के जो भविष्य के विवादों से बचने के लिए पहचान दस्तावेज जो है अनिवार्य है। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे APY यानी अटल पेंशन योजना के बारे में।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: आकाशवाणी FM रेनबो पर तीन का तड़का और 3:46 और 27 सेकंड। आप इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं संचिता के साथ और अगले जो चंक है उसके ओर बढ़ते हुए आर्यन खान की नई पहचान स्क्रीन राइटिंग अवार्ड्स में बड़ी जीत हुई। दोस्तों इस हफ्ते बॉलीवुड में एक नया नाम चर्चे में केंद्र में आया, वो है आर्यन खान। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज द बर्ड्स ऑफ बॉलीवुड तो हम जानते ही हैं। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन अवार्ड में शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़े सम्मान इन्होंने जीता। और ये तो एक नई खबर थी ही, सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि स्टार किड होने के बावजूद आर्यन अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबकी नजर उनके अगले प्रोजेक्ट पर भी बनी हुई है। कांस 2026 के फिर छाई ऐश्वर्या राय बच्चन, फैंस ने जीता दिल। और बॉलीवुड की ग्लोबल आइकॉन ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर कांस फेस्टिवल में वो गई थी, अपने शानदार अंदाज से अपने फैंस को चौंका दिया। क्लोजिंग सेरेमनी में अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ हुई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है और फैंस ने कहा क्वीन इज बैक। कांस में ऐश्वर्या की मौजूदगी हर साल चर्चे का विषय बनती है और इस बार भी उन्होंने अपने अंदाज से भारत का नाम रोशन किया। मई 2026 बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड फिल्म के लिए मिला जुला एक रिस्पॉन्स था। सिनेमा प्रेमियों के लिए एक दिलचस्प खबर ये थी कि 2026 के मई में बॉक्स ऑफिस आंकड़े सामने आ चुके हैं। फिल्म हिंदी फिल्मों को दर्शकों का अच्छा प्यार मिला, जबकि कई बड़ी फिल्मों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। ट्रेंड रिपोर्ट्स के अनुसार दर्शक इस समय मजबूत कहानी और नए कंटेंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इंडस्ट्री में

अब ये चर्चा तेज है कि बड़े सितारों के साथ साथ दमदार स्क्रिप्ट भी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बनी हुई है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अरिजीत सिंह की ही आवाज फिर से अमिताभ भट्टाचार्य के बोल को प्रीतम ने संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम है ए दिल है मुश्किल। 3:48 कार्यक्रम 3 का तड़का में आपके साथ हूं मैं संचिता।

और सफर इस कार्यक्रम का 8 मिनट और बाकी है और हमारे पास भी हैं पिटारे में बहुत सारे ऐसे ही खबरें। सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल का मजेदार वीडियो हुआ वायरल और आखिर में एक हल्के फुल्के लेकिन मजेदार खबर, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जाहिर इकबाल का एक फनी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो में जिम वर्कआउट के दौरान जाहिर की मस्ती और सोनाक्षी का मजेदार रिएक्शन फैंस को खूब पसंद आया। रणबीर कपूर की रामायण को लेकर उत्साह चरम पर है। बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रामायण एक बार फिर सुर्खियों में। रणबीर कपूर ने भगवान राम के किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो रही हैं।

मई में के अंतिम सप्ताह में फिल्म के सेट विजुअल और एफएक्स जो है और स्टारकास्ट को लेकर कई नई जानकारियां सामने आई, जिसमें दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। बड़े बजट और भव्य प्रस्तुति वाली इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में गिना जा रहा है। अब फैंस इसकी आधिकारिक झलक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाउसफुल 5 अपनी विशाल स्टारकास्ट और बड़े स्तर की शूटिंग के कारण लगातार चर्चे में बनी हुई है। मई के आखिरी सप्ताह में फिल्म के नए स्केड्यूल और कलाकारों की मौजूदगी की खबरों ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि फिल्म में जबरदस्त कॉमिक ट्विस्ट और मल्टी स्टारर मनोरंजन देखने को मिलेगा। फैंस पहले से ही इसे परिवार के साथ देखने वाली बड़ी एंटरटेनमेंट फिल्म मान रहे हैं। और वहीं धड़क 2, जी हाँ, बॉलीवुड प्रेमियों, रोमांस और इमोशनल से भरपूर खबर आ रही है कि फिल्म धड़क 2 को लेकर चर्चे तेज हो रहे हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की जोड़ी को दर्शक काफी दिलचस्पी से देखना पसंद कर रहे हैं। मई के अंतिम सप्ताह में फिल्म की शूटिंग और प्रमोशनल तैयारियों को लेकर चर्चाएं सोशल मीडिया पर छाई रही। माना जा रहा है कि ये फिल्म सिर्फ प्रेम कहानी नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों को भी गहराई से दिखा सकती है। युवाओं के बीच इस फिल्म को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। शाहरुख खान की नई फिल्म को लेकर भी बहुत बड़ी सस्पेंस बनी हुई है। काजोल की हॉरर फिल्म मां ने बनाई है उत्सुकता फैंस के बीच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी गीत के साथ हम चलते हैं आगे। ये सफर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन अगला सफर जो है 5:20 पर FM गोल्ड पर लेकर आऊंगी आपके लिए चाय और क्लासिक्स। फिलहाल इजाजत दे संचिता को और सुनते रहे इस गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म कलंक से अरिजीत सिंह की आवाज। अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत के बोल लिखे और प्रीतम ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम 3 का तड़का।

0: FM Rainbow-তে 3-1 গানের হ্যাট্রিক, গানের হ্যাট্রিক।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: টেলিলয়ের অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in অথবা টোল ফ্রি নাম্বার 14454 এর মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা লাভ করা সম্ভব।
1: নমস্কার, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जादू की बारात।
1: यादों की बारात 107 एफएम रेनबो पर यह है कार्यक्रम। आपके साथ हूं मैं संचिता। मई की खुशबू संग आई है यादों की ये बारात। सचते हैं फिर पर्दे पुराने, जगती है बीती हर बात। वो फिल्में जो मई में आई बन गई दिल की धड़कन, किस्से गाने संवाद उनके आज भी देते हैं स्पंदन। छुपे हुए कुछ राज भी होंगे, कुछ अनसुनी सी बात भी होगी, पर ट्रिविया के संग लौटेगी वो सुनहरी सी रात भी होगी। तो आइए चले सफर पर बीते लम्हों के साथ, जहां सिनेमा की दुनिया में बसती है यादों की बारात। और कौन है यादों की बारात की जो पहली फिल्म, वो कौन सी है? पहली फिल्म, चलिए गीत के माध्यम से ही हम जान ले। वैसे बता दें कि अभिजीत सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा की आवाज में ये गीत जब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज किस फिल्म के साथ हम यादों की बारात का सफर तय करने वाले हैं पहले घंटे में।
2: सात बजकर 10 मिनट 27 सेकंड, कार्यक्रम यादों की बारात।

जादू की बारात। वन ओ सेवन एफ एम रेनबो पर यादों की बारात, और इस सफर पर हम चल चुके हैं 31 साल पुरानी फिल्म बीवी नंबर वन, जो 1996 में रिलीज हुई थी 28th of May, यानी कि इसी महीने। बीवी नंबर वन एक दक्षिण भारतीय सुपरहिट फिल्म की आधिकारिक रीमेक थी। इसकी कहानी पूरी तरह मौलिक नहीं थी, क्योंकि 1995 की तमिल सुपरहिट फिल्म साथी लीलावती की आधिकारिक हिंदी रीमेक थी, जिसे प्रसिद्ध निर्देशक के बालचंदर ने बनाया था। इंटरेस्टिंग ये है कि तमिल संस्करण में अभिनेता कमल हसन ने हास्यपूर्ण सहायक भूमिका निभाई थी, जबकि हिंदी संस्करण में ये रंग अनिल कपूर के किरदार ने जोड़ा। निर्देशक डेविड धवन ने कहानी को उत्तर भारतीय दर्शकों के स्वाद के अनुसार अधिक ग्लैमरस, संगीत प्रधान और कॉमिक अंदाज में ढाला। यही बदलाव फिल्म की बड़ी सफलता का कारण बन गया। 1990 के दशक में सलमान खान और करिश्मा कपूर की जोड़ी जुड़वा और जीत जैसे फिल्मों के बाद बेहद लोकप्रिय हो चुकी थी। निर्माता वासु भगनानी और निर्देशक डेविड धवन जानते थे कि घरेलू कॉमेडी फिल्म में ये केमिस्ट्री दर्शकों को आकर्षित करेगी। बस दिलचस्प तथ्य ये है कि फिल्म में करिश्मा का किरदार पूजा एक पारंपरिक पत्नी का था, जो उनके ग्लैमरस इमेज से थोड़ा अलग था। दर्शकों ने उनके इमोशनल और कॉमिक बैलेंस को खूब पसंद किया, जिसमें फिल्म की पारिवारिक अपील और मजबूत हुई। सुष्मिता सेन का दूसरी औरत वाला किरदार शुरू में जोखिम माना गया, लेकिन बाद में यही इस फिल्म की एक पॉजिटिव साइड बनी। आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज। फिल्म का नाम बीवी नंबर वन, समीर के बोल को अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया। सात बजकर 19 मिनट 46 सेकंड, आप बने हुए कार्यक्रम यादों की बारात के साथ। आपके साथ हूं मैं संचिता।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जादू की बारात।
1: सेवन एफएम रेनबो पर यादों की बारात 7:29 और 8 सेकंड। बात कर रहे थे फिल्म बीवी नंबर वन की, जिसने 30 साल पूरे कर लिए इंडस्ट्री में। सुष्मिता सेन का जो दूसरी औरत वाला किरदार शुरू में जोखिम माना गया था फिल्म में, उस समय अपनी ग्लैमरस इमेज के लिए जानी जाती थी सुष्मिता, लेकिन बीवी नंबर वन में रूपाली का किरदार निभाना उनके लिए आसान फैसला नहीं था। वो किरदार कहानी में मैरिज ब्रेकर के रूप में दिखाता है, इसलिए आशंका थी कि दर्शक नेगेटिव प्रतिक्रिया दे सकते हैं, मगर सुष्मिता ने रोल को पूरी तरह ग्रे शेड में नहीं बल्कि इमोशनल वल्नरेबिलिटी के साथ निभाया। बाद में क्रिटिक्स ने माना कि उन्होंने किरदार को केवल वैम्प बनने से बचाया और उसमें इंसानी कमजोरी भी दिखाई। यही भूमिका उनके करियर के महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट्स में गिनी जाती है। फिल्म के गाने पहले से ब्लॉकबस्टर मानकर तैयार नहीं किए गए थे। बीवी नंबर वन का संगीत बाद में बहुत बड़ा हिट साबित हुआ, लेकिन शुरुआत में टीम को अंदाजा नहीं था कि एल्बम इतनी लोकप्रिय होगी। संगीतकार जोड़ी अनु मलिक और गीतकारों ने कॉमेडी, रोमांस और फिल्मी फैमिली ड्रामा के बैलेंस को ध्यान में रखकर गाने बनाए थे। जैसे कि चुनरी चुनरी का टाइटल ट्रैक ने रिलीज के बाद जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। खास बात यह है कि गानों की जो कोरियोग्राफी है, कोरियोग्राफी को फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखकर फन और कलरफुल बनाया गया, ताकि फिल्म एक मास एंटरटेनर की कैटेगरी में फिट हो सके। आगे बढ़ेंगे, अभिजीत, अलका याग्निक, आदित्य नारायण और अनमोल की आवाज है। समीर के बोल को अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम यादों की बारात 7:31।

यादों की बारात। आकाशवाणी एफएम रेनबो कार्यक्रम है यादों की बारात। 7:39 हम बात कर रहे हैं जिस फिल्म के बारे में, वो है बीवी नंबर वन। 30 साल पूरे कर लिए इसने इंडस्ट्री में और इसी फिल्म में अनिल कपूर का किरदार फिल्म में कॉमिक रिलीफ के लिए बढ़ाया गया था। फिल्म में अनिल कपूर का किरदार लखन जो है दर्शकों का फेवरेट बन गया, लेकिन कम लोग जानते हैं कि शुरुआत में उनका रोल अपेक्षाकृत बहुत ही छोटा रखा गया था और शूटिंग के दौरान निर्देशक डेविड धवन को लगा कि उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है कहानी में एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट जोड़ रही है, इसलिए कुछ दृश्यों को बढ़ा दिया गया। अनिल कपूर और तब्बू के बीच की मजेदार केमिस्ट्री भी ऑडियंस को बहुत पसंद आई। कई समीक्षकों ने माना कि फिल्म के इमोशनल ड्रामा के बीच अगर कॉमिक एनर्जी बनाए रखे तो कैसा रहेगा। अनिल कपूर की अहम भूमिका इसी बात को बिल्कुल प्रमाणित करती है। आगे बढ़ेंगे उस गीत के साथ, वही गीत चनरी चनरी। गाने की शूटिंग बेहद कठिन परिस्थितियों में हुई थी। बीवी नंबर वन का सबसे अगर पॉपुलर गीत कहे तो यही, आज भी पार्टी और वेडिंग प्लेलिस्ट का एक हिस्सा है ये। लेकिन इसकी शूटिंग आसान नहीं थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस गाने की जो आउटडोर फिल्मिंग के दौरान मौसम काफी खराब थी। मौसम और लाइटनिंग कंडीशंस बार बार बदल रही थी, जिसमें कई शॉट जो है दोबारा लेने पड़े और सलमान खान और सुष्मिता सेन की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बहुत ही नेचुरल दिखाने की

कोशिश की गई। कोरियोग्राफी को ओवरटली टेक्निकल ना रखकर फन और स्पॉन्टेनिटी के साथ जोड़ा गया। यही कारण है कि गाना जो है स्क्रिप्टेड डांस सीक्वेंस की बजाय बहुत एनर्जेटिक सेलिब्रेशन जैसा महसूस हुआ। निर्देशक डेविड धवन केवल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पर सीरियस फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि कहानी जो है फैमिली ऑडियंस के लिए एंटरटेनिंग साबित हो, इसलिए इमोशनल सीन्स के बीच वो कॉमिक सिचुएशंस, कुछ गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग जोड़ रहे थे। खासकर अनिल कपूर के सीन्स को स्क्रीन प्ले में बहुत स्ट्रैटेजिकली रखा गया था ताकि कहानी ज्यादा भारी ना लगे। यही वजह रही कि संवेदनशील विषय होने के बावजूद फिल्म जो है एक मास एंटरटेनर बनी और परिवारों के बीच लोकप्रिय हुई। आगे बढ़ेंगे उसी गीत के साथ, अभिजीत और अनुराधा श्रीराम की आवाज, समीर के बोल को अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम यादों की बारात।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर कार्यक्रम है यादों की बारात, और इस सफर में हम चल चुके हैं जिस फिल्म के साथ, वो है बीवी नंबर वन। रिलीज हुई थी 28 मई 1999, जिसने 30 साल पूरे कर लिए इंडस्ट्री में और शामिल है आज के सफर पर। 7:43 और 4 सेकंड बात करेंगे करिश्मा कपूर ने जो इमोशनल सीन्स के लिए अलग तैयारी की थी उसके बारे में। ग्लैमरस और एनर्जेटिक भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं करिश्मा, लेकिन बीवी नंबर वन में उन्हें एक आहत पत्नी का इमोशनली लेयर्ड किरदार निभाना था। लेयर्स अगर कहें तो हाँ, बहुत तरह के लेयर्स उनके कैरेक्टर को निभाना था। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ इंटेंस सीन्स में डायरेक्टर ने उनसे रेस्ट्रेंड एक्टिंग करने को कहा, ताकि इमोशन और मेलोड्रामेटिक जो रोल उन्हें दिया गया है उसको वो जो है उसमें जस्टिस दे सके। खासकर बिट्रेल वाले सीक्वेंस में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी सराहा गया। कई क्रिटिक्स ने माना कि फिल्म की इमोशनल स्ट्रेंथ जो है लार्जली अगर देखें करिश्मा के अभिनय पर टिकी हुई थी। फिल्म में कई कलाकारों का कॉमिक इम्प्रोवाइजेशन इस्तेमाल हुआ। डेविड धवन अपनी फिल्मों में एक्टर्स को इम्प्रोवाइज करने की छूट तो देते ही हैं। बीवी नंबर वन में भी कुछ कॉमिक मोमेंट्स स्क्रिप्टेड डायलॉग से बहुत अलग थे, स्पॉन्टेनियसली परफॉर्म किए गए थे। विशेषकर अनिल कपूर और सलमान खान ने कई सीन्स में एक्सप्रेशंस और कॉमिक टाइमिंग क्या खुद डाले थे? जी हाँ, बिल्कुल खुद डाले थे। इससे कन्वर्सेशंस जो है, बातचीत जो है, ज़्यादा बहुत आम लगा, बहुत रियलिस्टिक लगा और एंटरटेनिंग तो लगा ही। यही इम्प्रोवाइजेशन फिल्म की जो रिपीट वैल्यू है उसे बढ़ाने वाली कारणों में गिनी जाती है। रिलीज के बाद जब बीवी नंबर वन उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने लगी, 1999 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्मों में गिनी गई, तो फिल्म का विषय जो है मैरिज क्राइसिस पर आधारित था, फिर भी कॉमेडी म्यूजिक और स्टार पावर की वजह से ये एक फैमिली ऑडियंस एंटरटेनर फिल्म बन गई। सुष्मिता सेन की पॉपुलैरिटी ने भी इसकी सफलता में बड़ी भूमिका निभाई। बाद में इसे 1990s की आइकॉनिक कॉमेडी ड्रामा फिल्मों में गिना जाने लगा। आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ, शंकर महादेवन और हेमा सरदेसाई की आवाज है, समीर के बोल को अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया।

बात कर रहे थे फिल्म बीवी नंबर वन की। सबसे बड़ी स्पेशल फीचर यही है कि कॉमेडी और फैमिली मोशन का रेयर बैलेंस। 1990s की कई कॉमेडी फिल्म केवल हास्य पर आधारित थी, लेकिन बीवी नंबर वन की खासियत ये थी कि इसमें ह्यूमर के साथ साथ मैरिज, ट्रस्ट, बिट्रेयल और फॉरगिवनेस जैसे फैमिली थीम्स भी जोड़े गए। डायरेक्टर ने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जैसे सेंसिटिव विषय को डार्क या प्रीची बनने नहीं दिया, एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा बनाया। इसी के साथ आखिरी गीत इस फिल्म का सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाज में। सुखविंदर सिंह ने ही लिखा और उन्होंने ही इसे कंपोज किया। 8 बजे आप जुड़ेंगे मन की बात कार्यक्रम के बांग्ला अनुवाद के साथ। तब तक सुनते रहिए इस गीत को।

0: जादू की बारात।
1: वन ओ सेवन एफ एम रेनबो कार्यक्रम यादों की बारात से जुड़ चुके हैं हम फिर से। सुन रहे थे आप मन की बात कार्यक्रम का बांग्ला रूपांतरण। यादों की बारात में हमने जिस फिल्म का जिक्र किया वो है बीवी नंबर वन। इस सफर को आगे बढ़ाते हैं एक और फिल्म के साथ। इस फिल्म ने 22 साल पूरे कर लिए। 28 मई 2004 को रिलीज हुई और 22 इयर्स कंप्लीट कर लिए। ये कौन सी फिल्म है? प्रशंसा जोशी ने गीत के बोल लिखे, जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया, अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज। फिल्म का नाम सुनते हैं इस गीत को। कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत यादों की बारात।

हम तुम, जी हाँ, साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म हम तुम को कई समीक्षकों ने प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म व्हेन हैरी मेट सैली, जो रिलीज हुई थी 1989 से, प्रेरित माना। दोनों फिल्मों में एक पुरुष और महिला की वर्षों तक चलने वाली दोस्ती, टकराव और अंत प्रेम की थीम दिखाई देती है। हालांकि निर्देशक ने स्पष्ट किया कि हम तुम भारतीय संवेदनाओं और रिश्तों के हिसाब से विकसित की गई कहानी थी। फिल्म में भारतीय पारिवारिक भावनाएं, विवाह, दोस्ती और समय के साथ बदलते रिश्तों को अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसने इसे पूरी तरह बॉलीवुड पहचान दी। सैफ अली खान इस रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे। करण कपूर के किरदार के लिए शुरुआत में दूसरे अभिनेताओं पर विचार किया गया, लेकिन निर्देशक को ऐसा अभिनेता चाहिए था जो एक साथ फ्लर्टेशियस हो, मजाक करता हो और इमोशनली मच्योर भी हो। अंततः सैफ को चुना गया। सैफ ने किरदार के लिए अपने आइकॉनिक टाइमिंग और नेचुरल चार्म पर काफी काम किया। फिल्म रिलीज होने के बाद उनका परफॉर्मेंस इतना पसंद किया गया कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जिसने उनके करियर की दिशा बदल दी। रिया का किरदार भावनात्मक था। रिया यानी रानी मुखर्जी, समझदार और मजबूत महिला। निर्देशक चाहते थे कि अभिनेत्री रोमांटिक सीन्स के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी ला सके, इसलिए

लगभग तुरंत फाइनल कर लिया गया था। रानी और सैफ पहले भी साथ काम कर चुके हैं, इसलिए उनकी केमिस्ट्री को लेकर टीम जो है पहले से कॉन्फिडेंट थी। बाद में यह जोड़ी 2000 की सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ियों में शामिल हो गई। फिल्म में दोनों की जो सहज बातचीत है दर्शकों को बहुत वास्तविक लगी। हम तुम की सबसे अलग पहचान थी करण द्वारा बनाए गए एनिमेटेड कैरेक्टर हम और तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ, शान और अलका याग्निक की आवाज। प्रशन जोशी ने लिखा, जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया। 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात।

0: चिंता करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
1: मेरी भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: वाओ।
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: नॉट लिसनिंग,
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मर
1: जाए।
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: ओके, आई एम नॉट विद हर।
0: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: ओके, दैट्स इट।
2: जादू की बारात।
3: यादों की बारात। 8:48, 52 सेकंड। हम बात करें फिल्म हम तुम। हम तुम की सबसे अलग पहचान करण द्वारा बनाए गए एनिमेटेड कैरेक्टर हम और तुम। उस समय बॉलीवुड फिल्मों में एनिमेशन का प्रयोग बहुत कम होता था। इन कार्टून सीक्वेंसेस को मेल फीमेल साइकोलॉजी को मजेदार तरीके से दिखाने के लिए जोड़ा गया। निर्देशक कुणाल कोहली चाहते थे कि फिल्म मॉडर्न लगे और युवाओं से कनेक्ट कर सके। एनिमेशन ने कहानी को फ्रेशनेस दी और इसे रोमांटिक कॉमेडी जॉनर में अलग पहचान मिली। यही कारण है कि आज भी दर्शक इन कार्टून क्लिप्स को याद करते हैं। फिल्म में अलग अलग समय और जीवन के पड़ाव दिखाने के लिए यूरोप और भारत की कई जगहों पर शूटिंग की गई, विशेष रूप से एम्स्टर्डम, पेरिस और कुछ अन्य विदेशी लोकेशंस का इस्तेमाल रिलेशनशिप जर्नी को विजुअली रिच बनाने के लिए किया गया। निर्माता चाहते थे कि फिल्म इंटरनेशनल फील दे, क्योंकि कहानी कई वर्षों तक चलती है। विदेशी लोकेशंस के बावजूद फिल्म में भावनात्मक भारतीय टच बनाए रखा गया, जिसमें एक ये अर्बन इंडियन ऑडियंस में बेहद लोकप्रिय हुआ। करण कपूर का किरदार समय के साथ मच्योर होता गया, इसलिए सैफ अली खान के लुक में अलग अलग फेजेस दिखाए गए। शुरुआती हिस्से में उन्हें केयरफ्री, स्टाइलिश और प्लेफुल दिखाया गया, जबकि बाद के हिस्सों में उनके लुक को मच्योर बनाया गया। सैफ ने बॉडी लैंग्वेज, हेयर स्टाइल और एक्सप्रेशंस पर भी बहुत काम किया ताकि कैरेक्टर ग्रोथ नेचुरली दिखे। यही सबटल जो चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, फिल्म की बहुत बड़ी खासियत बनी और दर्शकों को लगा कि किरदार सचमुच समय के साथ बदल रहा है। आगे हम भी बदलेंगे एक गीत के साथ। अलका याग्निक, उदित नारायण है, प्रसून जोशी के बोल को जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम छाया लोक के अंतर्गत यादों की बारात, आप हैं संचिता के साथ।

जी हाँ बिल्कुल, लिरिक्स और अगर संगीत की बात करें तो फना के चंदा चमके चमचम से बिल्कुल मेल खाता है, लेकिन ये गाना हम तुम का है। एडिटर ने सीन्स को बहुत तेज या बहुत स्लो नहीं रखा। रोमांटिक कॉमेडी जॉनर में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए पॉजेस, जोक्स और इमोशनल बीस जो है बीट्स केयरफुली बैलेंस किए गए, और यही कारण है कि फिल्म एंटरटेनिंग होने के बावजूद इमोशनल भी लगी। जब सैफ अली खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवार्ड मिला तो कई लोगों के लिए यह सरप्राइजिंग था, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफी मजबूत था, लेकिन ज्यूरी ने उनकी सबटल परफॉर्मेंस और कैरेक्टर ग्रोथ को सराहा। ये मोमेंट उनके करियर टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाता है। 2000 में रोमांटिक सिनेमा बदल रहा था और हम तुमने मॉडर्न रिलेशनशिप बेस्ड स्टोरी टेलिंग को बहुत ही विख्यात बनाया। इसके बाद कई बॉलीवुड फिल्मों ने फ्रेंडशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग और मैच्योर रोमांस को सेंटर थीम बनाया। आज इसे 2000 की इन्फ्लुएंशियल रोमांटिक फिल्मों में गिना जाता है। हम बात कर रहे थे फिल्म हम तुम की। इसी के साथ इजाजत दीजिए संचिता को, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी कार्यक्रम को लेकर। तब तक सुनते रहिए आखिरी गीत चकते सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज में, और अगले कार्यक्रम के साथ भी रहिए।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,